सुजन हूँ। अठहत्तर अवनारद भक्ति सूत्र अहिंसा सत्य शौच दयाधिक्यादि चारित्राणि परिपालनीयानि यथार्थासाहे साधक भक्तान अहिंसा सत्य पावित्र्य दया आस्तिकता आदि सद्गुणांत सर्व प्रकारे पालन करावे।

दिल ने पुकारा प्रोग्राम में अभी एक बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने सुना, जो था फिल्म पाकीज़ा से। गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था कमाल अमरोही ने और संगीत से सजाया था गुलाम मोहम्मद ने। दोस्तों, मौसम आते जाते रहते हैं। इस मौसम की एक खासियत होती है, मौसम जैसे इस सृष्टि से जुड़े होते हैं, वैसे ही इंसान की जिंदगी से, हर एक इंसान के मन से भी जुड़े होते हैं। ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती है, कभी गम आते हैं। ये खुशियाँ गम आते जाते रहते हैं। खुशियों के दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, पर गम भरी ज़िंदगी बिताए नहीं बीतती। जब खुशियाँ होती हैं तो मानो वो ठंडी हवाओं की तरह होती है। ऐसा लगता है कि ऐसी हवाएं कभी जाए नहीं। ये खुशियाँ बारिश की बूंदों जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि धीमे धीमे गिरती रहे हमारी ज़िंदगी में। तो कभी गम आ जाते हैं तो लंबी गर्मियों की तरह ये गम की ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होती। बस ये मौसम और ज़िंदगी इस तरह जुड़े हुए हैं।

दिल पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म मॉडर्न गर्ल से, गाया था मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत से सजाया था रवि ने। ये प्यार का मौसम तो हर किसी की जिंदगी का खास मौसम होता है। इस मौसम में दोनों के सिवा तीसरे का कोई स्थान नहीं होता। सुबह शाम किसी के प्यार में गुमसुम रहता है हर कोई, न सर्दी न गर्मी न बारिश, बस बाहर तूफान और अंदर भी तूफान।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने सुना फिल्म तू नहीं और सही इस का गाना जो गाया था आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा था रवि ने। दोस्तों, ये रंग भरे बादलों का मौसम कभी न जाए ऐसी हर किसी की तमन्ना रहती है, मगर ये मौसम, ये प्यार के मौसम कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। फिर आते हैं कुछ रस्म रिवाज, जमाने के कुछ बंधन और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। दोस्तों, बाकी कुछ भी हो, मौसम तो चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं।

0: शाबाश। मैं रुनू सर।
1: जी मलका यानम।
0: हमने सुना है कि तुम शायरा भी हो। सावन की रुत है, इस रंगीले मौसम पर कुछ कहा हो तो सुनाओ।
1: इरशाद सर आंखों पर।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म नूर जहां से, गाया था सुमन कल्याणपुर ने, गीत था शकील बदायूनी का और संगीत से सजाया था रोशन ने। रंगे बचपन, रंगे जवानी, रंगे मोहब्बत, रंगे जिम्मेदारी, रंगे बुढ़ापा और आखिरकार रंगे मौत। दोस्तों, ये रंगीन जिंदगी जीते जीते इस रंग भरी दुनिया से अलविदा कहना ही पड़ता है। ये जीवन का मौसम कभी ख़त्म हो जाता है और कब ख़त्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता, शायद फिर से नया जन्म लेने के वास्ते।

0: ने पुकारा। इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अनोखा दान से, गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8, मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों ये मौसमों का क्या कहना, मौसम आते जाते हैं, जीवन मिलते हैं खत्म होते हैं और जिंदगी भी खत्म होती है। मौसम की तरह ये जिंदगी की रस्में कस्में आती जाती है, हर किसी की अलग कहानी है, आनी जानी है ये। चलिए हंसते मुस्कुराते बिताएंगे जो मिली ये जिंदगानी है। ऐसे ही प्यारे नगमे सुनकर हम भी ये इस मौसम की तरह खुश हो जाएंगे। सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे रेडियो विश्वास 90.8 और अगले मंगलवार जरूर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।
1: नाशिक मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विभागात शिक्षणाची सुवर्ण संधी। विद्यापीठाचं नाशिक उपकेंद्र घेऊन आलंय MBA आणि BBA कोर्सेस। इंडस्ट्री सेंट्रिक लर्निंग घडवेल तुमचं फ्युचर। ऍडमिशन्स ओपन फॉर MBA अँड BBA। अधिक माहितीसाठी संपर्क SPPU सब सेंटर नाशिक 0253-2-39-21-21।
2: कुवारा या चित्रपटामधलं सोनू निगम यांनी गायलेलं समीर यांचं गीत आता आपण ऐकणार आहोत। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।

0: वाह वाह, कमाल कर, इन लफ्जों में कामयाबी की मुबारकबाद। पब्लिक की तालियां आपकी शोहरत के डंके बजा रही।
1: मेरी तस्वीर के बनाने में आपका ही हाथ है शेख बाबू।
0: आप लोगों की शोहरत ने मेरे हौसले बढ़ा दिए। मैं ये चाहता हूँ कि चांद साहब के गीतों को दुनिया में फैला दूँ।
2: आपकी मेहरबानी साथ रही तो हमारे दिल की आवाज़ सारी दुनिया में गूंज उठेगी।
0: हमने प्रोग्राम बना लिया चांद साहब, हम लोग ऑल इंडिया टूर पर जाएंगे। आपके गीत और माला के नाच से दुनिया के दिलों को जीत लेंगे।
3: अरे वाह, फिर तो कसम है नीली छतरी वाले की, हर महीने शोहरत के साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। नहीं
1: ये टूर क्या होती है?
3: हाँ हाँ, ये टूर माने दूर दूर जाना।

0: अफीम की गोलियां फेंक दी।
1: लेकिन वो क्या जाने अफीम का कितना गहरा असर हो चुका है।

दिल ने पुकारा प्रोग्राम में अभी एक बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने सुना, जो था फिल्म पाकीज़ा से। गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था कमाल अमरोही ने और संगीत से सजाया था गुलाम मोहम्मद ने। दोस्तों, मौसम आते जाते रहते हैं। इस मौसम की एक खासियत होती है, मौसम जैसे इस सृष्टि से जुड़े होते हैं, वैसे ही इंसान की जिंदगी से, हर एक इंसान के मन से भी जुड़े होते हैं। ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती है, कभी गम आते हैं। ये खुशियाँ गम आते जाते रहते हैं। खुशियों के दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, पर गम भरी ज़िंदगी बिताए नहीं बीतती। जब खुशियाँ होती हैं तो मानो वो ठंडी हवाओं की तरह होती है। ऐसा लगता है कि ऐसी हवाएं कभी जाए नहीं। ये खुशियाँ बारिश की बूंदों जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि धीमे धीमे गिरती रहे हमारी ज़िंदगी में। तो कभी गम आ जाते हैं तो लंबी गर्मियों की तरह ये गम की ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होती। बस ये मौसम और ज़िंदगी इस तरह जुड़े हुए हैं।

दिली पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म मॉडर्न गर्ल से, गाया था मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत से सजाया था रवि ने। ये प्यार का मौसम तो हर किसी की जिंदगी का खास मौसम होता है। इस मौसम में दोनों के सिवा तीसरे का कोई स्थान नहीं होता। सुबह शाम किसी के प्यार में गुमसुम रहता है हर कोई, न सर्दी न गर्मी न बारिश, बस बाहर तूफान और अंदर भी तूफान।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने सुना फिल्म तू नहीं और सही इस का गाना जो गाया था आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा था रवि ने। दोस्तों, ये रंग भरे बादलों का मौसम कभी न जाए ऐसी हर किसी की तमन्ना रहती है, मगर ये मौसम, ये प्यार के मौसम कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। फिर आते हैं कुछ रस्म रिवाज, जमाने के कुछ बंधन और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। दोस्तों, बाकी कुछ भी हो, मौसम तो चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं।

0: शाबाश। मैं रुनुता।
1: जी मलकायन।
0: हमने सुना है कि तुम शायरा भी हो। सावन की रुत है, इस रंगीले मौसम पर कुछ कहा हो तो सुनाओ।
1: इरशाद सराखों पर।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म नूर जहां से, गाया था सुमन कल्याणपुर ने, गीत था शकील बदायूनी का और संगीत से सजाया था रोशन ने। रंगे बचपन, रंगे जवानी, रंगे मोहब्बत, रंगे जिम्मेदारी, रंगे बुढ़ापा और आखिरकार रंगे मौत। दोस्तों, ये रंगीन जिंदगी जीते जीते इस रंग भरी दुनिया से अलविदा कहना ही पड़ता है। ये जीवन का मौसम कभी ख़त्म हो जाता है और कब ख़त्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता, शायद फिर से नया जन्म लेने के वास्ते।

0: दिल पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अनोखा दान से, गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास 90.8, मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों ये मौसमों का क्या कहना, मौसम आते जाते हैं, जीवन मिलते हैं खत्म होते हैं और जिंदगी भी खत्म होती है। मौसम की तरह ये जिंदगी की रस्में कस्में आती जाती है, हर किसी की अलग कहानी है, आनी जानी है ये, चलिए हंसते मुस्कुराते बिताएंगे जो मिली ये जिंदगानी है। ऐसे ही प्यारे नगमे सुनकर हम भी ये इस मौसम की तरह खुश हो जाएंगे। सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे रेडियो विश्वास 90.8 और अगले मंगलवार जरूर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।
1: नाशिक मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विभागात शिक्षणाची सुवर्ण संधी। विद्यापीठाचं नाशिक उपकेंद्र घेऊन आलंय MBA आणि BBA कोर्सेस। इंडस्ट्री सेंट्रिक लर्निंग घडवेल तुमचं फ्युचर। ऍडमिशन्स ओपन फॉर MBA अँड BBA। अधिक माहितीसाठी संपर्क SPPU सब सेंटर नाशिक 0253-239-4921।
2: ऐकूया आशा भोसले यांनी गायलेलं आनंद बक्षी यांचं गीत। हे गीत आपण ऐकणार आहोत जॉनी आय लव्ह यू या चित्रपटामधलं। संगीतकार राजेश रोशन।

0: यहां का काम तो शायद खत्म हो गया है।
1: अच्छा ही हुआ जो काम करते रहे, मैं संभल गई। अब आपसे माफी मांगू।
0: मुझसे?
1: हाँ, आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ।
0: तो क्या हुआ? तुम्हारे भले बुरे के जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारे खाते से?
1: समझी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं।
0: नहीं, मैं तो जिंदगी से दूर भाग रहा था, एक ऐसे रास्ते पर से जहां आराम था न किसी पेड़ का छाया, धूल ही धूल थी अपनी नाकामियों की, जिसमें मैं अपने आप को खो बैठा था। इतने में तुमने मुझे आवाज दी, मैं रुक गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जिंदा हूं।
1: दीपक,
0: क्यों आवाज दी तुमने मुझे? क्यों याद दिलाई ये सब कुछ?

0: अब मैं चाहते हूँ।
1: अरे ये क्या कह रही हैं आप,
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: नहीं मैं और नहीं गा सकती।
3: गाओ,
1: आपको गाना पड़ेगा।